0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह की ठंडी हवा, चाय की खुशबू और चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कान, आय हाय हाय लाजवाब, यही तो है असली गुड मॉर्निंग का मजा। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो। कहते हैं ना कि मुस्कान किसी का मूड बदल सकती है, किसी का दिन आसान बना सकती है और जिंदगी को थोड़ा हसीन बना सकती है। तो आज का मंत्र यही है कि ज्यादा सोचो मत, बस मुस्कुराओ। आपके चेहरे की चमकती मुस्कान किसी को हिम्मत दे सकती है और खुद को काबिल बना सकती है। चलिए आज की सुबह को और भी चमकदार बनाते हैं थोड़ी चाय, थोड़ी उम्मीद और ढेर सारे मुस्कान के साथ। वो आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान और आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM पर मेरा मॉर्निंग शो, जहां हर सुबह मिलती है आपको पॉजिटिव एनर्जी और दिल से जुड़ी बातें। तो दोस्तों मुस्कान बनाए रखिए और जिंदगी को फुल ऑन जीते रहिए। कुछ ही देर के बाद लौट कर आता हूँ और भी ढेर सारी बातें करने, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गहरे खाई में गिर गया। लेकिन गिरते गिरते उसने एक पेड़ की टहनी पकड़ ली। अब वो लटका हुआ था, ऊपर चढ़ नहीं सकता, नीचे देखता है तो बहुत गहरा कुआं। वो चिल्लाने लगा, कोई है, बचाओ बचाओ। कुछ देर बाद एक शांत आवाज आई, मैं भगवान हूँ, छोड़ दो उस टहनी को, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर जोर से बोला, अरे कोई है भाई, मुझे बचाओ। हम सब की जिंदगी कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हमें सिर्फ भरोसा करना होता है खुद पर, ऊपर वाले पर, अपने अंदर की ताकत पर। लेकिन होता क्या है, हम डर जाते हैं और फिर उसी पुरानी चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। कई बार जिंदगी कहती है, छोड़ दो, भरोसा करो, मैं हूं ना। लेकिन हम जवाब देते हैं, कोई और ऑप्शन है क्या हमारे पास? तो आज याद रखो, जिंदगी तब बदलती है जब तुम भरोसा करते हो। कभी कभी गिरने से बचने के लिए पकड़ने से ज्यादा छोड़ना जरूरी होता है। जब तक आप चीजों को छोड़ोगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये जवानी ये दीवानी इस फिल्म के अंदर डायलॉग है ना, कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। तो याद रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और ये किस्सों का कारवा कैसा लगता है बताइएगा जरूर डीएम कीजिए इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। और सुनते रहिए किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, आरजे अदनान आपके साथ है इन द शो
1: ऑल इज वेल। आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और इस वक्त हम एक गेम खेलते हैं। अब उस गेम का नाम तो आपको पता चल ही गया होगा।
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: जी हाँ, पहली। तो इसमें मैं आपको एक पहली पूछूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब बताना। तो आज की पहली कुछ ऐसी है कि एक पैर है काली धोती, जाड़े में वो हरदम सोती, गर्मी में हमें छाया देती, सावन में वो हरदम रोती, बताइए ये क्या है। और ये ऐसी एक चीज है जो कि बरसात में हम साथ में लेकर चलते हैं, बताइए आप। इसका जवाब डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, या व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस नंबर पर। जल्द से जल्द जो देगा जवाब उसे मिलेगा।

0: सबसे बड़ा असली इम्तिहान क्या है पता है? ऑफिस की डेडलाइन और घर की जिम्मेदारियों में बैलेंस बनाकर रखना। वर्क लाइफ बैलेंस सुनने में आसान लगता है पर असल में ये कला भी है। और लाइफ मंत्रा में अभी हम इसी पर बात करेंगे। सोचिए, अगर काम ही काम करेंगे तो थकान आपको खा जाएगी, और अगर सिर्फ आराम ही करोगे तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो सही रास्ता है बीच का। कभी कभी ऑफिस से जल्दी निकल जाइए, बच्चों के साथ खेलिए, परिवार के साथ डिनर पर बैठिए, दोस्तों से मिलिए या बस अकेले टहल लीजिए। ये छोटे छोटे पल आपको फिर से रिचार्ज कर देंगे। याद रखिएगा, काम आपकी रोजी है लेकिन जिंदगी आपकी मोहब्बत है, और मोहब्बत को वक्त देना असली वर्क लाइफ बैलेंस है। तो दोस्तों, लाइफ मंत्रा में एक बात याद रखिए कि काम भी कीजिए और जिंदगी भी जिए, यही है आज का लाइफ मंत्रा। तो इसको फॉलो कीजिए और मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.

यार, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई, जिसको गाया है किशोर कुमार जी ने। तो लगता है अभिषेक भाई की भी किसी अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई है, इसलिए ऐसे गाने सुनने का भी मूड कर रहा है। चलिए फिर अभिषेक की फरमाइश पूरी करते हैं और उनका ये पसंदीदा गाना प्ले करते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो मुझे व्हाट्सएप करें 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जल्दी करे, देर मत करे और एंजॉय करे आने वाला सुपर से डुपर हिट गाना। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो

0: यहीं पर।
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrists, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: ना, ना, ना, ना, ना.

0: Let's talk about career. You're listening to MGM 90.8 FM. With RJ Adnan. So, career mein abhi kahan कितनी वैकेंसी निकली इसी पर हम बात करते हैं। तो SS यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें जूनियर इंजीनियर एंड टेलीकॉम इंजीनियर में बहुत सारे वैकेंसीज है। तो फिलहाल इसमें इंपॉर्टेंट डिजिग्नेशन है सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकॉम एंड IMD साइंटिफिक असिस्टेंट, सब जूनियर इंजीनियर है। और ये एग्जाम कब होने वाली है? तो पेपर फर्स्ट होगा अक्टूबर और नवंबर में एंड सेकेंड पेपर होगा दिसंबर में। और इसमें एप्लीकेशन करने के लिए आपको 22 सितंबर 2026 तक का वक्त है। एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? सो सिविल इंजीनियरिंग में जिसने डिग्री या डिप्लोमा किया है वो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट। इसी के साथ IMD साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें जिनका डिग्री या डिप्लोमा जिनका हुआ होगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसका एज लिमिट क्या है? तुम्हारी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए एंड रिजोर्ट कैटेगरी के लिए अलग से इसका कुछ एज लिमिट है। और एप्लीकेशन फीस रहेगी बस 100 रुपीज। और अब सवाल होता है कि यार ये नौकरी कहाँ पर मिलेंगी SSC के जरिए, ये जो एग्जाम होने वाली है। इस एग्जाम के बाद BRO, CPWD, सेंट्रल वाटर कमीशन, MES, NTRO, IMD इन जैसे संस्थानों में ना आपको नौकरी करने का चांस है। SSC के 1748 जगहों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इतनी जगह है और SSC की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो बात याद रखिए एंड सुनते रहिए
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrist, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन फाइव, छत्रपति संभाजी नगर.
3: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कल...

करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार।

बहुत ही बेहतरीन वाली खुश खबर है, वो है स्मार्ट सिटी अब धीरे धीरे अपनी हो रही है, इसके लिए काम भी शुरू है और हर एक डिपार्टमेंट अपने अलग इनिशिएटिव लेकर कुछ डेवलपमेंट करके अपने शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। सो स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात एक होती है स्मार्ट बसेस जो अपने शहर में हमें दौड़ती हुई नजर आती है और यहाँ से वहाँ पर हमें पहुँचाती है। बट 100 बसेस में से 25 तो खराब थे, अब उनको साइड किया गया है एंड अब जो बचे हुए बसेस है उसके अंदर और कुछ बसेस ऐड की गई है। 61 बसेस यानी कि 61 नए स्मार्ट सिटी बसेस अपने शहर में आ गई है, जी हाँ, और ये सारी की सारी बसेस इलेक्ट्रिक रहने वाली है। सो अब आपका सफर मस्त इलेक्ट्रिक बस के अंदर एसी की हवा खाते खाते होने ही वाला है। सो बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये बसेस अपने शहर में कब से शुरू होगी? सो इनका ओपनिंग होगा यानी कि रस्तों पर ये आपको दिखाई देगी 17 सितंबर से, यानी कि 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर इनका ओपनिंग होने वाला है और ये सभी सिटी बसेस हमें रास्तों पर दिखाई देगी और इनमें से कुछ स्पेशल बसेस है जो कि बस हमें टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचाएगी, जैसे कि अजंता एलोरा तक ये बसेस जाएगी। 61 बसेस नहीं आगे पूरी की पूरी, उसमें से कुछ बसेस ऐसे स्पेशल है और बाकी बसेस तो शहर में हमें दिखाई देगी। सो ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव और एक स्मार्ट सिटी बनने की तरफ एक अहम कदम उठाया है अभी अपने महानगर पालिका ने और स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट ने। सो बहुत बहुत बधाई हो एंड थैंक यू स्मार्ट सिटी ऑफिस हो या जो भी लोग इसमें काम कर रहे थे उन सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि ये छोटे छोटे कदम से ना तो बहुत जल्दी हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनने ही वाला है। 17 सितंबर का इंतजार है नए बसेस में बैठकर ट्रैवल करने के लिए और कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा ही होता है। स्टे ट्यून ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: दिल के अरमां आंसू में बह जाते भाई, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उससे वही होगा। तो देखो, पहले बता दो, यहाँ पर मैं प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करने वाला हूँ। बात यह है कि दिल की आर में हमारे भी आंसू में बह गए भाई, जब मैं भी ना कमल तालाब देखने गया। अपने शहर में ना तर कमल तालाब सुरू झालेला आहे, आणि जेव्हा त्याचं ओपनिंग झालं होतं तर खूप थाटा माटात ओपनिंग केलं होतं, आणि वाटलं होतं की आता कमल का फूल दिखाई देगा, लेकिन वो फूल ने फूली कर दिया हमें। तकरीबन पूरे 5 एकड़ का एक कमल तालाब बनाया हुआ है, और इसमें कमल के फूल कितने है, बस 10 कमल के फूल है। मतलब 5 एकड़ के कमल तक तालाब में बस 10 कमल के फूल, वाह भाई वाह। इसे कहते हैं गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। मतलब भले हम 20 रुपए का टिकट निकाल रहे हो, लेकिन इंसान एक एक्सपेक्टेशन से जाता है कि भाई नाम कमल तालाब है, हमें कमल के फूल दिखाई देंगे, बहुत ही बढ़िया फोटो वोटो हम खींचेंगे और तालाब के किनारे बैठकर थोड़ा सुकून से वक्त गुजारेंगे। लेकिन दिल के अरमां आंसू में बह जाते और सोचते भाई नाम तो कमल है, लेकिन कमल का फूल कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और ऊपर से फिर प्रशासन कहता है कि यार हम तो बनाते हैं कुछ प्लेसेस लोगों को जाने के लिए, लेकिन टूरिस्ट वहां पर आते ही नहीं। आएगी क्यों भाई, 10 कमल के फूल देखने के लिए आएगी इतना बड़ा तालाब बनाने के बाद? तो थोड़ा आपको भी काम करना पड़ेगा, फूल वहां पर बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को फूल कम बनाना पड़ेगा आपको, समझे? खैर बाकी तो चलता है, चलने दो, बल्कि बस चलता ही आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रशासन को नहीं पता होगा, ये पता तो होगा, लेकिन वही है ना, गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। खैर कहीं आपको 11वां फूल दिखाई दे ना कमल का, तो बताइएगा जरूर मुझे, ताकि मैं भी देखूं कि यार ये 10 फूल तो है, 11वां कहां से आ गया। बट कमल तालाब का नाम कमल तालाब है, तर त्याप्रमाणे त्याचं नावाचं तरी अस्तित्व ठेवायला पाहिजे। काही बोले आता, जाऊन द्या।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: बचपन में हम सभी ने गाना सुना था ना कि बच्चे मन के सच्चे सारी दुनिया की आग के तारे, लेकिन ये गाना अब थोड़ा बदल चुका है। बच्चे स्ट्रेस के पक्के, भारी सिलेबस ने छुड़ा दिए छक्के। एक रिपोर्ट आई है, स्टूडेंट वेलबींग पल्स रिपोर्ट, जो कि हर साल आती है, और इस रिपोर्ट में इस साल थोड़ी चौंकाने वाली बात आई है। जैसे जैसे हमारे देश के बच्चे की क्लास बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस गायब हो जाती है। जी हाँ, मतलब बच्चा जब नर्सरी में होता है तो खिलखिलाता है, पहली क्लास में मुस्कुराता है, और आठवीं तक आते आते एकदम सीरियस हो जाता है, और बारहवीं तक पहुँचते पहुँचते तो वो भाई साक्षात देवदास बन जाता है पढ़ाई के मामले में। ये हमने भी देखा होगा, और रिपोर्ट के मुताबिक ना तो बच्चों के अंदर हैप्पीनेस लेवल एकदम कम हो चुका है, और छोटी सी उम्र में उन्हें टेंशन जैसी बीमारियां भी सहन करना पड़ रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी। सोचिए, हम बड़ा सोचते हैं कि असली स्ट्रेस तो ऑफिस के बॉस और ईएमआईज में है, लेकिन यहाँ 15 साल के बच्चे करियर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। देखो यार, एक वक्त था कि हमें इस बात का टेंशन होता था कि यार संडे को शक्तिमान का एपिसोड ना छूट जाए। उसी उम्र में आज के बच्चे मेंटल हेल्थ को लेकर गुजर रहे हैं। वैसे रिपोर्ट में क्या है, किस तरीके से और कैसे क्लास बढ़ने के बाद बच्चों का सुख चैन सब कुछ गायब हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन तब तक सोचिएगा यार कि पहले हमारा बचपन कितना खूबसूरत होता था, खुशहाली वाला होता था, और आज भी हमने नोटिस किया होगा कि हमारे बच्चे हो, मतलब मेरे तो नहीं है बट आपके बच्चे, सुबह उठते ही स्कूल जाते, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, फिर कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, और इस सब चक्करों में ना तो बच्चे खुश रहना ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए इस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया में जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों की मुस्कान कम हो जाती है। क्या कुछ है रिपोर्ट, पता चलेगा कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: बात है उस स्कूल बैग की जिसमें किताबों से ज्यादा टेंशन भरी पड़ी है, आज के वक्त में हमने देखा भी होगा। तो भाई साहब, एक ऐसा सर्वे हुआ था जिस सर्वे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें पता चला है कि बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स एकदम कम हो चुका है। इस सर्वे में तकरीबन 8000 से ज्यादा बच्चे थे और डेटा कहता है कि 8वीं क्लास में उनमें से 65% बच्चे खुश थे, लेकिन जैसे ही वो 12वीं तक पहुंचते हैं तो खुशी का लेवल गिरकर सीधे 48% हो जाता है। मतलब 17% खुशियां रास्ता बदल देती है करियर और कॉम्पिटिशन को लेकर। ये बच्चों में स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं कि कॉन्फिडेंस की बात करें तो लड़कियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस तकरीबन 52% बचा है, जबकि लड़कों में 64% है। और स्ट्रेस से निपटने के लिए हमारे देश के होनहार बच्चे क्या करते हैं, उन 70% बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, गाने सुनते हैं। मतलब स्ट्रेस ज्यादा ही बढ़ता है, क्योंकि मोबाइल भी स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। मतलब स्ट्रेस भगाने के लिए जो हम रास्ते पर जा रहे वो भी थोड़ा गलत है। और बस 17% बच्चे ही ग्राउंड पर जाते हैं, खेलते हैं, पसीना बहाते हैं। तो ऐसा ही पूरा रिपोर्ट में आया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। इसी के साथ बच्चे अपना दुखड़ा किसको सुनाते हैं, तो उन 50% बच्चे अपने दोस्तों को दुखड़ा सुनाते हैं, यानी कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। एंड फैमिली के साथ 40-42% बच्चे अपना टेंशन शेयर करते हैं। और हर एक स्कूल में ना तो काउंसलर और थेरेपिस्ट है, तो उनके पास बस 5-6% बच्चे ही जाते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा भी है, काउंसलर के पास जाना मतलब पागल समझते। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, इसको तो दूर करना ही पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पेरेंट्स और टीचर्स ने अपने बच्चों को सिर्फ नंबर के रेस में नहीं दौड़ाना चाहिए। 12वीं का रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, बट उनकी मुस्कान 8वीं के बाद से ही छिन जाती, तो वो मुस्कान गायब मत होने दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों की मुस्कान ही छिन जाएगी तो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। और इस बारे में जरा पेरेंट्स ने भी और टीचर्स ने भी सोचना चाहिए। हम बच्चों को बस नंबर के रेस में दौड़ा रहे हैं या जिंदगी में सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सेल्फ एनालिसिस ये सभी को करना जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजी।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।
3: नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
4: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है NGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: Masala. Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: स्मार्ट सिटी की ओर छत्रपति संभाजीनगर एक और अहम कदम बढ़ा रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि अपने शहर वासियों के लिए बहुत ही बेहतरीन वाली खुश खबर है, वो है स्मार्ट सिटी अब धीरे धीरे अपनी हो रही है, इसके लिए काम भी शुरू है और हर एक डिपार्टमेंट अपने अलग इनिशिएटिव लेकर कुछ डेवलपमेंट करके अपने शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। सो स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात एक होती है स्मार्ट बसेज, जो अपने शहर में हमें दौड़ती हुई नज़र आती है और यहाँ से वहाँ पर हमें पहुँचाती है। बट 100 बसेज में से 2500 ख़राब थे, अब उनको साइड किया गया है एंड अब जो बचे हुए बसेस है उसके अंदर और कुछ बसेस ऐड की गई है। 61 बसेस यानी कि 61 नए स्मार्ट सिटी बसेस अपने शहर में आ गई है, जी हाँ, और ये सारी की सारी बसेस इलेक्ट्रिक रहने वाली है। सब आपका सफर मस्त इलेक्ट्रिक बस के अंदर एसी की हवा खाते खाते होने ही वाला है। सब बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये बसेस अपने शहर में कब से शुरू होगी? सो इनका ओपनिंग होगा यानी कि रस्तों पर ये आपको दिखाई देगी 17 सितंबर से, यानी कि 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर इनका ओपनिंग होने वाला है और ये सभी सिटी बसेस हमें रास्तों पर दिखाई देगी और इनमें से कुछ स्पेशल बसेस है जो कि बस हमें टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचाएगी, जैसे कि अजंता एलोरा तक ये बसेस जाएगी। 61 बसेस नहीं आगे पूरी की पूरी, उसमें से कुछ बसेस ऐसे स्पेशल है और बाकी बसेस तो शहर में हमें दिखाई देगी। सो ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव और एक स्मार्ट सिटी बनने की तरफ एक अहम कदम उठाया है अभी अपने महानगर पालिका ने और स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट ने। सो बहुत बहुत बधाई हो एंड थैंक यू स्मार्ट सिटी ऑफिस हो या जो भी लोग इसमें काम कर रहे थे उन सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि ये छोटे छोटे कदम से ना तो बहुत जल्दी हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनने ही वाला है। 17 सितंबर का इंतजार है नए बसेस में बैठकर ट्रैवल करने के लिए, और कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा ही होता है। स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

की अरमा आंसू में बह जाते भाई, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उससे वही होगा। तो देखो पहले बता दूं, यहाँ पर मैं प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करने वाला हूँ। बात यह है कि दिल की आर्मा हमारे भी आंसू में बह गए भाई, जब मैं भी ना कमल तालाब देखने गया। अपने शहर में ना तर कमल तालाब सुरू झालेला आहे, आणि जेव्हा त्याचं ओपनिंग झालं होतं तर खूप थाटा माटात ओपनिंग केलं होतं, आणि वाटलं होतं की आता कमल का फूल दिखाई देगा, लेकिन वो फूल ने फूली कर दिया हमें। तकरीबन पूरे 5 एकड़ का एक कमल तालाब बनाया हुआ है, और इसमें कमल के फूल कितने है, बस 10 कमल के फूल है। मतलब 5 एकड़ के कमल तक तालाब में बस 10

0: कमल के फूल, वाह भाई वाह, इसे कहते हैं गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। मतलब भले हम 20 रुपए का टिकट निकाल रहे हो, लेकिन इंसान एक एक्सपेक्टेशन से जाता है कि भाई नाम कमल तालाब है, हमें कमल के फूल दिखाई देंगे, बहुत ही बढ़िया फोटो वोटो हम खींचेंगे और तालाब के किनारे बैठकर थोड़ा सुकून से वक्त गुजारेंगे। लेकिन दिल के अरमा आंसू में बह जाते और सोचते भाई नाम तो कमल है लेकिन कमल का फूल कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और ऊपर से प्रशासन कहता है कि यार हम तो बनाते हैं कुछ प्लेसेस लोगों को जाने के लिए, लेकिन टूरिस्ट वहां पर आते ही नहीं। आएगी क्यों भाई, 10 कमल के फूल देखने के लिए आएगी? इतना बड़ा तालाब बनाने के बाद तो थोड़ा आपको भी काम करना पड़ेगा, फूल वहां पर बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को फूल कम बनाना पड़ेगा आपको, समझे? खैर बाकी तो चलता है, चलने दो, बल्कि बस चलता ही आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रशासन को नहीं पता होगा, ये पता तो होगा, लेकिन वही है ना, गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। खैर कहीं आपको 11वां फूल दिखाई दे ना कमल का तो बताइएगा जरूर मुझे, ताकि मैं भी देखूं कि यार ये 10 फूल तो है, 11वां कहां से आ गया। बट कमल तालाब का नाम कमल तालाब है तर त्याप्रमाणे त्याचं नावाचं तरी अस्तित्व ठेवायला पाहिजे। काय बोले आता, जाऊन द्या।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

0: सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से में। आज हम एक ऐसे गाने के बारे में बात करेंगे जो आजकल इंस्टाग्राम पर ना बहुत ही वायरल हो रहा है और हर कोई ना तो उसी पर रील बनाता ही जा रहा है। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो। ये गाना तो आप लोगों ने सुना होगा लेकिन इसका आपको मतलब पता है? इस गाने में एक दुल्हन है जो कि नखरे कर रही है अपने ससुराल जाने के लिए और ससुराल वाले उसको एक के बाद एक मनाने आते हैं। सबसे पहले आते हैं ससुर जी, वो आते हैं उसके लिए चूड़ियां लेकर आते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ जाने के लिए वो मना करती है। फिर उसको मनाने के लिए आता है उसका देवर। देर का मतलब होता है देवर और वो साथ में एक लहंगा भी लेकर आता है गिफ्ट में, लेकिन वो गिफ्ट तो रख लेती है लेकिन उसके साथ भी जाने के लिए मना ही करती है। फिर थक हार कर आना पड़ता है उसके पति को ही। वो आता तो है लेकिन आने के बाद थोड़े बातें भी सुनाता है, गुस्सा भी करता है, वो प्यार वाला गुस्सा। बट उस दुल्हन को चाहिए क्या था कि उसको मनाने के लिए उसका पति तो आए, उसी का तो इंतजार कर रही थी। तो वो पति आता है, मनाता है और फिर उसके साथ जाने के लिए वो राजी हो जाती है। ऐसे तो कुछ ऐसा मतलब है और ऐसा किस्सा है इस गाने का। तो जब गानों के मतलब समझ में आते हैं तो गाने सुनने में मजा आ ही जाता है। स्टे ट्यून्ड, ऑल इज वेल, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
0: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
0: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
0: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: For admission, contact 937171 4265 or visit www.mgmu.ac.in.

बचपन में हम सभी ने गाना सुना था ना कि बच्चे मन के सच्चे सारी दुनिया की आग के तारे, लेकिन ये गाना अब थोड़ा बदल चुका है। बच्चे स्ट्रेस के पक्के, भारी सिलेबस ने छुड़ा दिए छक्के। एक रिपोर्ट आई है, स्टूडेंट वेलबींग पल्स रिपोर्ट, जो कि हर साल आती है, और इस रिपोर्ट में इस साल थोड़ी चौंकाने वाली बात आई है। जैसे जैसे हमारे देश के बच्चे की क्लास बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस गायब हो जाती है। जी हाँ, मतलब बच्चा जब नर्सरी में होता है तो खिलखिलाता है, पहली क्लास में मुस्कुराता है, और आठवीं तक आते आते एकदम सीरियस हो जाता है, और बारहवीं तक पहुँचते पहुँचते तो वो भाई साक्षात देवदास बन जाता है पढ़ाई के मामले में। ये हमने भी देखा होगा, और रिपोर्ट के मुताबिक ना तो बच्चों के अंदर हैप्पीनेस लेवल एकदम कम हो चुका है, और छोटी सी उम्र में उन्हें टेंशन जैसी बीमारियां भी सहन करना पड़ रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी। सोचिए, हम बड़ा सोचते हैं कि असली स्ट्रेस तो ऑफिस के बॉस और ईएमआईज में है, लेकिन यहाँ 15 साल के बच्चे करियर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। देखो यार, एक वक्त था कि हमें इस बात का टेंशन होता था कि यार संडे को शक्तिमान का एपिसोड ना छूट जाए। उसी उम्र में आज के बच्चे मेंटल हेल्थ को लेकर गुजर रहे हैं। वैसे रिपोर्ट में क्या है, किस तरीके से और कैसे क्लास बढ़ने के बाद बच्चों का सुख चैन सब कुछ गायब हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन तब तक सोचिएगा यार कि पहले हमारा बचपन कितना खूबसूरत होता था, खुशहाली वाला होता था, और आज भी हमने नोटिस किया होगा कि हमारे बच्चे हो, मतलब मेरे तो नहीं है बट आपके बच्चे, सुबह उठते ही स्कूल जाते, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, फिर कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, और इस सब चक्करों में ना तो बच्चे खुश रहना ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए इस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया में जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों की मुस्कान कम हो जाती है। क्या कुछ है रिपोर्ट, पता चलेगा कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: बात है उस स्कूल बैग की जिसमें किताबों से ज्यादा टेंशन भरी पड़ी है, आज के वक्त में हमने देखा भी होगा। तो भाई साहब, एक ऐसा सर्वे हुआ था जिस सर्वे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें पता चला है कि बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स एकदम कम हो चुका है। इस सर्वे में तकरीबन 8000 से ज्यादा बच्चे थे और डेटा कहता है कि 8वीं क्लास में उनमें से 65% बच्चे खुश थे, लेकिन जैसे ही वो 12वीं तक पहुंचते हैं तो खुशी का लेवल गिरकर सीधे 48% हो जाता है। मतलब 17% खुशियां रास्ता बदल देती है करियर और कॉम्पिटिशन को लेकर। ये बच्चों में स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं कि कॉन्फिडेंस की बात करें तो लड़कियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस तकरीबन 52% बचा है, जबकि लड़कों में 64% है। और स्ट्रेस से निपटने के लिए हमारे देश के होनहार बच्चे क्या करते हैं, उन 70% बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, गाने सुनते हैं। मतलब स्ट्रेस ज्यादा ही बढ़ता है, क्योंकि मोबाइल भी स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। मतलब स्ट्रेस भगाने के लिए जो हम रास्ते पर जा रहे वो भी थोड़ा गलत है। और बस 17% बच्चे ही ग्राउंड पर जाते हैं, खेलते हैं, पसीना बहाते। तो ऐसा ही पूरा रिपोर्ट में आया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। इसी के साथ बच्चे अपना दुखड़ा किसको सुनाते हैं, तो उन 50% बच्चे अपने दोस्तों को दुखड़ा सुनाते हैं, यानी कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। एंड फैमिली के साथ 40-42% बच्चे अपना टेंशन शेयर करते हैं। और हर एक स्कूल में ना तो काउंसलर और थेरेपिस्ट है, तो उनके पास बस 5-6% बच्चे ही जाते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा भी है, काउंसलर के पास जाना मतलब पागल समझते। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, इसको तो दूर करना ही पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पेरेंट्स और टीचर्स ने अपने बच्चों को सिर्फ नंबर के रेस में नहीं दौड़ाना चाहिए। 12वीं का रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, बट उनकी मुस्कान 8वीं के बाद से ही छिन जाती, तो वो मुस्कान गायब मत होने दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों की मुस्कान ही छिन जाएगी तो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। और इस बारे में जरा पेरेंट्स ने भी और टीचर्स ने भी सोचना चाहिए। हम बच्चों को बस नंबर के रेस में दौड़ा रहे हैं या जिंदगी में सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सेल्फ एनालिसिस ये सभी को करना जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8 FM.

0: यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
1: नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
0: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।